0: और जो देखे शिकागो पाकिस्तान उम्मीद जाते तो उन्होंने जीता कहेंगे नगा को भी था 75,000 पो नास्को ते आगे रही था किगुरे इन सेलेस्टीन का कि 75,000 सेलेस्टीन का भाई शे न्यो इन का भाई शे सिलिंग टिप्टेम अगमूत यस आगा को जोर चिके 75,000 सो तो मजीता कहेंगे नेगे स्टाटू 74 आश नंबर 2 हाँ नंगो जहाँ को यो मुझो आगो आबे आ कूद यारों ने जिता इगुरे प्रगुद इगुरे डेविड के प्रगुद नागन जो चिका डेविड के प्रगुद 75,000 बोनस माँ मुझे मुआवजा गुनी का किपे किचोंगा ना कोई नंबर थ्री कुकु जब इरा का सनियो अंगे बायु तक तो बोलनियो गाले नो अंगे नोले कुकु का पैसा कोचम का पैसा गुरी बेबी तेरिंगियो आमे जगे रिबागियो कोमी स्टाटस 74 आश कागो निन गोई तक 50 क्या करे गोई तक 50 क्या करे मेलो में ना इगिफिका ना 50 ना फुंगवा स्टाटस 74 आश नंबर 3 कुकु जब इन 30,000 कुकु या 30,000 हाय गनम सी मोशे किंग या तो कुल किडोगो से कहते से ताय ताचा फिर मेलो
1: ताके में मतो
0: यस
1: मुझे ना चले
0: अच्छा मैं क्या है
1: ये मुझे कहते से नौपा ताके में
0: बाय बाय बाय कहते से कभी सा
1: करो बाय बाय जी बॉयज चल वो के टुरुरु ए बारा को जो नगो जी जो बॉयज मत वो
0: उनको या न्यून में तो आगे
1: मत वो एक बॉयज कर दे जी नी लोगो के रो मत ही रे जो ता बॉयज तो ओ के नू को बो दे रु जा
0: मिन जी से लेते
1: ए अब मिन जी से तो वे बो मोरी कम मिन जी से तो भी नहीं
0: आगे मिन गयाम
1: ए अमी ने ने वायम को वाले की तो मौत हो रहा है निगल लोग को वालों को रुचा को वाले की नी लोगों को तो नमी बरात रुचा वे लोगों को ओंगे जो मचे जो नेट करो नी मेरु ने गेल्सी ने चायो
0: उन्हों तक
1: ए को बामारी गुरुतो कोंगो यारा जेरे
0: कोंगो ये बेरु लगे बामारी गुरुतो नसान दसाना कामिरु सलागो मैं कुचा को नुम्बान Karibuni tena. Aga meja sigi gori kilago college magi pele sukulishe. Ki maobe la kwe kolia nyop ko bela lago sukulishe. Kiyo kitu ini pepo mpaya. Iyo tunakata kwa jina la Yesu. Ngomi kanisa ge so aji kabisa go gutung sa ge so aji ge onda tamir mire na ta. Ngoe sela kwa ta ke tul muta sukuli ko julat. Agi mwaji la kwe ngungileji ijenge sabe ngung ne ba muta. So किंगे मी सुगुला जे गिजम को मुआवे जेन गिजम गिजम को मुआवे जेन मलमु यान न्योने कॉलेज ने जेन बेतूत ने गे मंडें के इतने पर सुगुल ने हिना इले सबेत को ने आगो इमन किंगे मंडे कि तोगन का के लगा के तरीन क्लास तब तो मनो को एक नानी इले माइशो लगो ना सुगुल को इके को ने नेन रबेने मागुमी इबीता उइले ताउ नानो इरोसन सो को सहायो को गनीशा आगे तो लेनिन कैंसे गिरो वेरी ताप काबानम के प्लस के याद नो के चुल गए याद ए गले किन को प्रेशर वाला तो सो इगिल गए सो मन अगेन ने ले लिन कई गा गुन को जल संगुनो ई न्योर सबे ने करारन अत्य मुताई न्यो न्योर ए मन इरो मन यानी कन्यल ससगी अत्य मुताई ने ले लगिन ने चू तक चू Mandugo Chukwa choran time table nungu ya baga aktaga sinip ke turta tin koroto kya kai kya git ke ur gure pun ibi turta tin kabetin kase nam sila shafia ka compound ko to gi limi area ngo isai mungi borje sigin de time table le jin do time table yangu e kone age ne kole ka ka ko isai magat ko mingu na ko somani ki ko ki gojge ka sarta guno yes Kuki no negi makini ke gubernur tap kalian je. Negi kerang guna presiden nanya aku bakuti. Lah kau nyonya negi kau sege. Kui lain bi tu nana kan roin datang aku tu masuk mansal lah aku guna aku tamu tak kenyor presiden aku kau mandara bruta kualita ya. Ro, ogil keo. Aku sega langguna. Kasi ada news 174 ash. Tu madegi sengmutu kacau mun. Tu madegi sengmutu game meja big taman gigu aja tak tahu san. Coba gugu. Orang ni cerita naga gigu aja mun. Tapi meja big kata. Tigure falare, falare, kaki kaki falare, nyo silingata, tati tausan jepang kwa kaiyege, oron chita agen ne kikure, kikure nga, kikure Joseph kaki kaki nyo tati tausan ne, yes, pika yang soto mabik sisi tu, so ame jepi jau toko pitingu no, eng tai geshe jau mu, tagi geshe mu, kiko aja naga tukul kuku, oye mau wa nyo no, mau jamin kwa kaiyege juga psa, amung kaki herbi kyo kaki kaki bo naseng nyo kubi mut kitiung kwa ni jege, oron chita ne kure in Sylvia. Kaki kaji 400 jita negure Charles kaki kaji 550 jita negure Dennis kaki kaji 400 jita negure Mario kaki kaji kini nengyo 450 iro ya ni big cakap kita kaya gitu ya ni big tukul mami jine meja number 3 niyo aja kangeringi itu big cakap bonus agni kalau jine agi new tukul magat keseru aja tukul lemu ngok kiat kuku Status 74 ash. Nasikia raha kusemwa. Inge na nyinyaka ingalale nena. Ina ile taisabe.

और जो देखे सगा चगांगे तो सरे न्यू का कि मैं कर दोगे तो ना बंगा पे खा के कर दोगे ते ये गावे के कर तो मगे करे ते हां निकागो के कर को तो मीनो स्टेटस 74 आजा और नि तो नगा को गिल गया को लारा अफसर मगे कर चना सांग मगे रे तो रनिया रो रो नि डेनिस वे वे वे वा तो सा मैं अम्मा को कुजा ओबा ओबा ओबा ओबा यार इन दोनों में जितो कुल सी मेट साई जो तो चंगन यो का गेम बिचे का 4000 Kuja status 74 ash number 1 kasani new status 74 ash number 1 Iraju tu status 74 ash number 1 kasani new status 74 ash number 1 Rono daga yata kenge na wanget Dakika ni moja imebaki Utikir chinsang kumapawa tagine Auzuri ka mauna leji ni jutu number 1 status 74 ash number 1 Iraju kasani new kako utiebi ameja jita na nyo Negit chonga nongo tigil ke chonga ning star 883 star 12 ash number 5 Inyuru 23,000 jita kenge kicho Ngopi jita kenge na jutu yota watu amesawu yo Kukure na Ezekiel Serema magun kita ketukul ni meite zita ya chunita cha Femi ngetu yebe tu na tog nebo in Is chamabili kongete sana na kwa isa kumi Ngte kutu yonotu nebo misa mekse Tukul ngtukul otu itosi kubata josi Ngte kutu yonotu nebo munyak ta cha Femi